के आसपास बनता है, कुछ मुल्क और बाद में इजाफी होते चले गए या उसे थोड़ा बहुत, इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमत जो उसके दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी और इतनी ज्यादा जाबराना हुकूमत करने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कोई इस हुकूमत को छीन लेगा, इस हुकूमत को खत्म कर देगा, इस हुकूमत को नाबूद कर देगा। लेकिन अजीजों क्या हुआ, वाकए करबला के बाद एक सदी भी नहीं बढ़ पाई कि बनी उमैया हमेशा हमेशा के लिए मलून हो गए और हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। यानी हुकूमतों का यह सिलसिला होता है कि एक हुकूमत जाती है, फिर बाद में कोशिश करके दोबारा फिर वो लोग आते हैं, फिर हुकूमत करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, बनी उमैया जब गए करबला के वाकये के बाद तो बनी उमैया हमेशा के लिए गए और बनी उमैया के आसार अगर रह गए हैं, एक आसार एक असरात जो है वो होते हैं अभी भी, आप कह सकते हैं कि बनी उमैया के तर्ज की हुकूमतें बाकी, उस सोच की हुकूमतें बाकी हैं, लेकिन बनी उमैया की हुकूमत फिर नहीं आ सकी। ये करबला का असर था। लेकिन जो मौजू है यहाँ पे, नहीं मालूम किसने किसने देखा किसने नहीं देखा, मौजू ये है कि कयाम हुसैनी के तरबियती असरात या इनकलाब हुसैनी के तरबियती असरात, जो अजीम इनकलाब हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह अपनी शहादत के जरिए से ले आए, जो इनकलाब ऐसा नहीं था कि हुकूमत बहुत बदल गई हो, जो बाहर का इनकलाब नहीं दिख रहा था लेकिन एक ऐसा अंदरूनी इनकलाब था जो बहुत सारे बाहर के इनकलाबात लाने की सलाहियत रखता था, इसलिए इनकलाब का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। यूं नहीं हुआ कि करबला के वाकये के बाद फौरन जो है हुकूमत बदल गई, और इमाम ने भी ये कहीं कहा नहीं था, इमाम ने ये जुमला कहीं भी नहीं कहा कि मैं यजीद को खत्म करने जा रहा हूँ, ये यजीद को मारने जा रहा हूँ, यजीद की हुकूमत के खात्मा करने जा रहा हूँ। ठीक है, कूफियों के खत आए थे, उनके खत का जवाब देना एक इमाम पर लाजिम हो गया था कि अगर कोई हिदायत चाह रहा हो, उनके अंदर कुछ छिपे हुए दूसरे लोग भी हों जो इमाम के जरिए से अपना फायदा भी चाह रहे हों, लेकिन अगर एक गिरोह हिदायत चाह रहा है तो वक्त के इमाम पर लाजिम है कि उसकी हिदायत के लिए कदम उठाए। लेकिन नतीजा इमाम को पहले से मालूम था, जो इमाम ऐलान करते जा रहे थे कि इन्नल्लाह शाअयरानी कतीला, अल्लाह चाहता है कि हमें कतील देखे, कतील यानी कत्ल हुआ देखे, मकतूल देखे, मकतल में देखे, अल्लाह हमारी शहादत देखना चाहता। ये इमाम को पहले से बहुत ही वाज़े तौर पर अच्छी तरह से मालूम था, लिहाजा इमाम हुसैन सलाम ये बिल्कुल कहे कि कभी नहीं निकले कि मैं यजीद को मारने या ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप परेशान नहीं हो, वजाहत करना चाहता हूँ, अगर एक यजीद का खात्मा कर दिया जाए तो दूसरे यजीद आने के लिए तैयार होते हैं, यजीदों का सिलसिला जारी रहता है। लिहाजा इमाम ने उस बुनियाद को पे तवज्जो की कि किस बुनियाद पर काम किया जाए कि जिसके बाद लोग यजीदों को कबूल ना कर सके। लिहाजा इमाम ने जो नुक्ता तहरीर करके लिख के दिया वो ये फरमाया कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकला हूं ताकि अपने नाना रसूलुल्लाह की उम्मत में इस्लाह करूं, इन्हें तब्दील करूं, क्योंकि अगर उम्मत में इस्लाह नहीं होगी तो एक यजीद के बाद दूसरे यजीद आते रहेंगे। यजीद के बाद मरवान आ गया, मरवान के बाद अब्दुल मलिक इब्न मरवान आ गया, हिशाम आ गया, क्या क्या आते गए, वो सब यजीदी थे, जब तक भी रहे यजीद थे। बनी उमैया की हुकूमत खत्म हो गई, बनी अब्बास जो अहले बैत के नाम पर आए, नारा ही उनका यह था कि हम अहले बैत को राजी करने के लिए आए हैं, रजन ले आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए हम हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, जंग कर रहे हैं। और इसी नारे की बुनियाद पर जो आशिकान अहले बैत थे वो बनी अब्बास के साथ खड़े हो गए, जंग करने लगे। इमाम ने मना भी किया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना भी किया कि इनकी नीयतें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस नारे की बुनियाद पर कि चूंकि बनी उमैया के मुकाबले में जंग की जा रही है लिहाजा हमें साथ देना चाहिए, और नारा ये लगा रहे हैं कि आले मोहम्मद के लिए हम कुछ कर रहे हैं, आले मोहम्मद को राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो आकर हजारों हजारों दसियों हजार कुर्बानियां दी गईं और बनी उमैया का खात्मा हुआ। लेकिन फिर कौन आया, फिर बनी अब्बास आ गए, और बनी अब्बास जो ये कहते थे कि हम आले मोहम्मद को राजी करने के लिए आए हैं, जब उनसे कहा गया कि भाई तुम तो आले मोहम्मद के लिए हुकूमत करने जा रहे थे, तो कहा आले मोहम्मद तो हम ही हैं, कहा आप कैसे आले मोहम्मद हो गए, कहा रसूलुल्लाह के चचा अब्बास थे, हम उनकी नस्ल से हैं। तो आल जो है ऊपर चली गई, आले मोहम्मद से आल से माने क्या होते हैं,
جو آپ کے فرزند ہوں گے وہ آپ کے آل ہوں گے آپ کے

0: जिंदा होता है हर करबला के बाद।
1: शहीद की जो मौत है
2: वो कौम की हयात है।
1: शहीद की जो मौत है
2: वो कौम की हयात है।
0: अलबत्ता उस शेर पे या मिसरे पे नहीं जाते हैं, अजीम शायर है, बड़े शायर हैं, बड़े उनके रोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा किरदार रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। बल्कि एक नुक्ता अगर बयान कर दें ज़िमनन करके कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के तोड़ने की कोशिश की गई और जन्नतुल बकी के रोजों को मिसमार किया गया, अभी 100 साल से ज्यादा हो रहे हैं, 101-102 साल हो रहे हैं जब जन्नतुल बकी के रोजों को मिसमार किया गया और पहले पूरी उम्मत को चेक किया गया कि यहां पर क्या आलम है, फिर इरादा यह था कि रसूलुल्लाह के रोजे को भी तोड़ दिया जाएगा, तो पूरे आलम इस्लाम से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से शदीद एतराज हुआ। उसमें सबसे ज्यादा मजबूत जो एतराज हुआ था इन रोजों के तोड़ने के लिए, जन्नतुल बकी के लिए भी और रसूलुल्लाह के रोजे के लिए, वो हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ था। पूरा डेलीगेशन यहां से हिंदुस्तान की सरजमीन से अरब की सरजमीन पे गया। उस वक्त आप सोचें, वहां उस वक्त जहाजवाद नहीं चलते थे इस तरह से। उस वक्त उन्होंने सफर किया और जाके कॉन्फ्रेंस में बैठे, कॉन्फ्रेंस में खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसके लीड कर रहे थे, उनके साथ पूरा डेलीगेशन गया था। इतनी जबरदस्त तकरीर और ऐसी दलीलों के साथ पेश किया रोजों के लिए, मकामात मुकद्दसा के लिए, कि लोगों ने तकाजा किया कि बादशाह के सामने सारे मसाइल पेश किए जाए। लेकिन बहरहाल जन्नतुल बकी तो टूट चुका था, रसूलुल्लाह का रोजा महफूज रह गया। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि जब जन्नतुल बकी की भी आप खुलकर ज़ियारत कर सकेंगे, अच्छी तरह ज़ियारत कर। बहुत ही दर्दनाक मसला होता है कि मर्द लोग तो चलो फिर भी गुजर जाते हैं, ख्वातीन को तो देखने तक भी नहीं दिया जाता। एक निगाह पहले ही होता था, तो 4-6 साल पहले की सीढ़ियों से चढ़ के बाहर की जालियों से देख लिया करती थी, या पीछे की कुछ दीवारें ऐसी थी जहां से दिखाई पड़ जाता था। वो सब भी बिल्कुल ऊपर कर दिया गया, सीढ़ियों पर चढ़ने की इजाजत ही नहीं है। फिर बगल में कुछ होटल है तो वहां ऊपर की खिड़कियों से जाके बास ख्वातीन देख लेती थी, तो अभी वहां पर उन खिड़कियों पर, वो अच्छे होटल्स हैं, उन खिड़कियों पर आकर बिल्कुल सख्ती से बंद कर दिया गया। मजबूत वहां पे ऐसे प्लास्टिक नहीं मालूम शीशे के, बिल्कुल कुछ दिखाई ना पड़े, और सेंसर के साथ लगाया गया है कि अगर कोई इसे छेड़खानी करना चाहे तो आवाज आ जाए। यह आलम है, यह आले सऊद का आलम है जी हाँ, जिनको आप ये कह सकते हैं कि आज के बनी उमैया खानदान तो नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें खानदान की बुनियाद पर नहीं हुआ करती हैं, तरीकों की बुनियाद पर और आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हुआ करती हैं। तो हम वापस पलटते हैं अजीजों इस नुक्ते पर, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप गौर करेंगे कि इस साल के मुहर्रम में क्या फर्क हुआ है, क्या असरात हुए हैं, किन असरात को हम देख रहे हैं, और आइंदा क्या असरात और होने वाले हैं। और असरात से मुराद हमारी बहस ये नहीं यहां पर ज्यादा होने वाली है कि ऐसे हुकूमत फर्क हो गया, यूं अमरीका को हो गया, ये इसराइल को हो गया, ये लोग ये कामयाबी हुई। हमें असल असर को देखना है कि करबला का रूह है, करबला का कयाम आशूरा का और हुसैनी इनकलाब का इंसानों के दिल और रूह और तरबियतों पे क्या असर होता है, और किसकी बुनियाद पर एक ऐसी जमात, एक ऐसा गिरोह तैयार होता है, किस तरबियत की बुनियाद पर ऐसा गिरोह तैयार होता है जो इतना ज्यादा कुव्वत के साथ, इतनी मजबूती के साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को बार बार सरनगू करता है और बार बार जिल्लत का सामना करना पड़ता है। ये सोचा जा रहा था कि कुछ और रास्ता निकलेगा, ये तरीका निकलेगा, अब ये कुछ कर लेंगे, अब ये अपनी इमेज को सही कर लेंगे, लेकिन जितना ही दिन गुजरता गया उतनी एक दिन नई रसवाई, नई जिल्लत, नई शिकस्त मुसलसल नसीब होती रही। ये करबला का असर है अजीजों, इस पर गौर करेंगे करबला कितना असर कर सकती है और करबला के असरात किस तरह से आगे सफर कर सकते हैं, और करबला के असरात के लिए किसी एक सरजमीन की महदूदियत लाजिम नहीं कि एक ही सरजमीन पे करबला असर करेगी। यूं नहीं है कि करबला ईरान ही में असर करेगी, ना, कोई महदूद नहीं। बल्कि अगर कोई जमीनी और मकानी एतबार से देखना चाहे तो करबला का ज्यादा असर तो खुद करबला में होना चाहिए। जो हमारे उसूल हैं, हम अपने उसूलों से जिस तरह कुछ चीजों को समझना चाहते हैं, तो करबला का तो सबसे ज्यादा असर इराक की सरजमीन पे होना चाहिए, करबला का सबसे ज्यादा असर खुद करबला की सरजमीन पे होना चाहिए।

अब मैं नहीं बताऊंगा, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन सद्दाम के ज़माने में मेरे वालिद गए थे ज़ियारत करने के लिए, वालदेन, तो आकर बहुत ज़्यादा परेशान इसी बात पे थे कि अभी तो यहाँ पे यह था कि भाई हम लोग लखनऊ में होते थे उस ज़माने में, बाद में ईरान चले गए, तो लखनऊ में यह होता था कि भाई मुहर्रम के ज़माने में सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें बंद की जाती हैं जो आमतौर से लोग दूसरे दिनों में जायज़ समझते हैं। ये एक नई शरीयत है कि दूसरे दिनों में जायज़ है लेकिन मुहर्रम में नाजायज़ करार दे लेते हैं। इतना बहरहाल इस पहलू से पॉजिटिव अगर देखना चाहें तो चलो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे 2 महीना अपने आप को हराम से बचा रहे हो तो ठीक है भाई, खुदा करे कि 2 महीना जो 12 महीने में तब्दील हो जाए। लेकिन वो बुजुर्गवार हमारे वालिद मरहूम जो है वो वहां से वापस पलटे तो उनको बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ थी कि करबला में सामने इमाम हुसैन का रोजा था और सामने उधर जनाब अब्बास का रोजा था, और वहां होटल के काउंटर पर जो है क्या मसलन इंडियन फिल्मों को क्या चल रहा होता, तो वो बेचारे सोचे नहीं थे, सीधे साधे आदमी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो ये मैं इस नुक्ते को बताना चाहता हूं कि मुमकिन है करबला की सरजमीन पर होते हुए भी करबला का असर ना हो, और करबला की सरजमीन से बहुत दूर, यहां 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर अगर आप चाहें तो करबला का असर हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लुबनान में हो गया, जैसे ईरान में हो गया, जैसे यमन में हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे ईरान में हो गया, पूरे लुबनान में हो गया, लेकिन एक बड़ी तादाद ने करबला के असर को कबूल किया। तो यहां पे ये तय करना अहम है कि कब्र का होना अहम है। अब थोड़ा मुश्किल मरहले में आपको ले जा रहे हैं, कब्र जहां हुसैन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैहि की कब्र हो उससे बढ़ के और क्या हो सकता है। इश्क है, मोमिनों का इश्क है कि किसी न किसी तरह से पैसे इकट्ठा करते हैं, जाते हैं, ज्यारत करते हैं, रवायात मौजूद हैं, मुतादिद रवायात मौजूद हैं, लेकिन मुमकिन है कब्र हुसैन इब्ने अली मौजूद हो लेकिन राह हुसैन इब्ने अली मौजूद ना हो, तो वहां मुसलसल अमरीका ही की हुकूमत चल रही हो, अमरीका के जाने के बाद भी हुकूमत चल रही हो, लेकिन अगर कब्र हुसैन इब्ने अली मौजूद ना हो, राह हुसैन इब्ने अली मौजूद हो, तो जालिमों को बार बार शिकस्त देना मुमकिन हो जाए। राह हुसैन इब्ने अली, हमारी सबसे बड़ी आरजू यह होती है कि मरने के बाद भी किसी को करबला मिल जाए, किसी को नजफ मिल जाए, किसी को वादी सलाम मिल जाए, अमीरुल मोमिनीन की कब्र मौजूद हो, अमीरुल मोमिनीन का रोजा मौजूद हो, और वहीं पर क्या क्या मंजर देखे हैं नहीं मालूम, अर्ज नहीं कर सकते हैं यहां पर। लेकिन असल मसला यह है, इस पूरी पूरे निजाम का, पूरे सिलसिले का जो इतने सालों से कायम किया गया है, जो मुसलसल मजलिसें हो रही हैं, जो मुसलसल आप मजलिसों में आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं है इन मजलिसों के बाद आप दिल से दुआ करें और किसी तरह इंशाल्लाह अरबईन करबला पहुंच जाए, खुदा करे हो, बहुत अच्छा है, ये हमेशा हमारी दिल की दुआ होना चाहिए। लेकिन ये सारी मजलिसें इसलिए नहीं है कि सिर्फ आप करबला पहुंच जाएं, बल्कि ये मजलिसें ये हैं कि करबला जा सके या ना जा सके लेकिन राह करबला हमें मिल जाए, राह हुसैन इब्ने अली मिल जाए। अगर राह हुसैन इब्ने अली मिल जाती है तो बहुत दूर से भी एक नई करबला नजर आना शुरू हो जाती है। अब ये मुश्किल में नहीं पड़िएगा, मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा हूं कि कौन से जुमले कहे जाएं, कौन से जुमले नहीं कहे जाएं। कौम की हालत को यहां तक नीचे ले जाया जा चुका है कि ना उन्हें आप सिमली समझ में आती है, ना मेटाफर समझ में आता है, या आपकी जबान बता रहे हैं, पढ़ाया सबको जाता है, ये सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में सबको पढ़ाया जाता है कि सिमली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है। बास तो मौलवी अमामा लगा के कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं कहना चाहिए करबला जैसा कदम उठाया गया आज की करबला, तो आप मुमकिन कहें अच्छा ठीक है हम लोगों को तो पढ़ाया गया तो स्कूल में मौलाना को नहीं पढ़ाया गया होगा। नहीं नहीं, मौलाना को भी पढ़ाया जाता है, मौलाना लोगों को भी इब्तदा के दूसरे ही तीसरे साल पढ़ाया जाता है, ठीक है उसको सिमली और मेटाफर नहीं कहते हैं, उसको हाइपरबोल नहीं कहते हैं, उसको उर्दू में, अरबी में, फारसी में कहते हैं तशबी, इस्तियारा, मुबालगा, ये सारे जुमले कहे जाते हैं, समझाने के लिए कहा जाता है। जब आप कहें कि मेरा बेटा शेर जैसा है तो वो शेर जैसा नहीं हो गया, है ना, उसके पंजे नहीं निकल आए, उसके जबड़े तेज नहीं हो गए, उसके मुंह से जो है बड़े बड़े

तो बदबू नहीं हार रही है। शेर जब कहते हैं मेरा बेटा शेर जैसा है, यानी ये कि मेरा बेटा बहादुर है। जब मुशाबहत दी जाती है तो किसी वजह से दी जाती है। जब कहा जाए फला वाकया करबला जैसा हुआ तो यहां पर यह नहीं देखा जाता। अब फिर यहां पर मैं कह रहा हूं कि बाद लोग इसमें मिसाल देने भी मुश्किल हो जाएगी, ना समझी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब और उससे भी आगे क्या कहते हैं, आप ये नहीं कहते कि मेरा बेटा शेर जैसा है, बल्कि क्या कहते हैं मेरा बेटा शेर है। फर्क क्या हो गया? अब याद आया सातवीं क्लास छठी क्लास का फर्क यह हो गया कि जब आप कहेंगे शेर जैसा है तो यह तस्बीह होगी, यह सिमिली होगी। लेकिन जब आप कहेंगे मेरा बेटा शेर है तो यह मेटाफर हो जाएगा, यह इस्तेहारा होगा। और लिटरेचर में इस्तेहारे को सिमिली से ज्यादा अहमियत हासिल है, ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। जब कहा जाए कि कश्मीर तो जन्नत है, एक मतलब आप कहें कश्मीर जन्नत जैसा है यह भी अच्छा है, लेकिन जब आप देखेंगे ये तो जन्नत है तो जन्नत नहीं है भाई, यही जमीन ही है। लेकिन ये मेटाफर है, ये इस्तियारा है, ये समझाने के लिए है कि इसका हुस्न इतना है कि जन्नत याद आ रही है। तो जब ये कहा जाए कि आज की करबला, आज की शहादतें, आज के हुसैन, तो इसका मतलब कोई हुसैन इब्ने अली जैसा नहीं हो सकता। वो जो शहादतें दे रहे हैं वो तो अपने आप को हुसैन इब्ने अली के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं समझते, लेकिन हमें और आपको समझना है कि ये शहादतें राह हुसैन इब्ने अली में दी जा रही, राह हुसैन इब्ने अली को जिंदा किया जा रहा है। अब ये समझाना, बाद लोग क्या है पढ़ाई क्या के? आप लोग भी समझते होंगे अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं कि वो छठी सातवीं क्लास में जो पढ़ाई की जाती है वो पढ़ने के लिए नहीं किया जाता है, वो खाली इम्तिहान पास करने के लिए होता है। तो इम्तिहान पास करने के लिए वो उसकी डिफिनेशन याद कर लेते हैं, जाके लिख भी देते हैं, नंबर भी मिल जाता है, बाद में भूल ही जाते हैं। मौलवी लोग भी भूल जाते हैं, अमामे भी लगा के मुमकिन है भूल जाते हो। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हुसैन इब्ने अली जैसी कोई करबला फिर होने वाली है, लेकिन बहरहाल इस्लाम को जिंदा करने के लिए राह हुसैन इब्ने अली ही अख्तियार करनी पड़ेगी, रास्ता वही। हम तो ये दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह कौम की हालत थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा वसी जहन से बातों को समझें, मिसालों को समझें, मेटाफर को समझें और उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश करें। अब हम वापस पलटते हैं अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला अल्लाहु अकबर। ये जुमला जो आपके सामने पेश किया गया ये जाहिरी तौर पर हुसैनी मोमेंट, अब जो भी आप जुमला कहें, हुसैनी मोमेंट, हुसैनी इनकलाब, हुसैनी मिशन, हुसैनी तहरीक का ये सबसे पहला जुमला है जाहिरी तौर पर। और वो कब का है? 26 रजब की रात का, 27 रजब की शब जिसे आप कह सकते हैं, जब इमाम हुसैन इस्लाम को मदीने में मदीने के गवर्नर के पास बुलाया गया और वहां पर इमाम से बैत का तकाजा किया गया। 15 रजब को हाकिम शाम की मौत हुई थी और पहला यजीद जो है सफर में था, शिकार खेलने गया था, जो इस्लाम में जायज नहीं है। शिकार करना जायज है, शिकार खेलना, समझ रहे हैं जी? हाँ, अभी तो जमाना नहीं रहा कोई शिकार उकार न खेलता है न करता है, लेकिन कभी कभी जुमले इस्तेमाल करते हैं, शिकार करना जायज है, चूंकि एक इंसान की जरूरत हो सकती है, गजा की जरूरत हो सकती है, खाने की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर कोई जाके तफरीह के तौर पर शिकार खेलने के तौर पर जाके किसी जानवर को मारे, ये इस्लाम में जायज नहीं है। तो वो बहरहाल शिकार खेलने जाते थे, हाकिम लोग बादशाह लोग उनको खाने की जरूरत थोड़ी नहीं होती थी, वो जब शिकार करने जाते थे तो शिकार करने नहीं जाते थे, शिकार खेलने जाते थे। शिकार करने वो जाता है कि जो बेचारा घर में भूखा है, बच्चों की गजा मौजूद नहीं है, असबाब फराहम नहीं है, तो चलो एक शिकार के जरिए से कुछ लोगों का पेट भर जाएगा। तो वो शिकार खेल वेल के आया था, जल्दी बुलाया गया और आके हुकूमत दी गई। तो हुकूमत के बाद सबसे पहला ख्याल जो यजीद को आया
वो ये कि हमारी बैयत तो सब हर जगह से ली जा चुकी, पहले ले ऑलरेडी

0: जा चुकी थी पहले ही। 60 हिजरी का यह वाकया है, 60 हिजरी से पहले ही हाकिम शाम पूरे इस्लामी बड़े बड़े शहरों में जो मरकजी हैसियत रखते थे, बहुत सारे शहरों की कोई हैसियत नहीं होती थी, वो क्या कर लेंगे, लेकिन जो मरकजी शहर थे मक्का मदीना कूफा ऐसे शहरों में जा जाके बैत ली जा चुकी थी। बसरा जहां पे लश्कर था, कूफा और बसरा इस्लामी लश्कर वहां पे रहा करता था, बहुत ही अहम रोल अदा किया था। मक्का मदीना रसूलुल्लाह की सरजमीन थी, मदीना सरजमीन थी, मक्का सरजमीन। तो यहां पर ऑलरेडी पहले ही 2-3 साल से यह सिलसिला चल रहा था कि मुसलसल यजीद की बैत ली जा चुकी थी। और जब इन बड़े शहरों ने बैत कर दी थी, यानी पूरे आलम इस्लाम ने यजीद की बैत कर ली थी, जब पूरा आलम इस्लाम किसी शख्स की बैत कर चुका हो, जब आज के लिहाज से देखा जाए तो कितना होगा, आज के लिहाज से आलम इस्लाम 1,92,93 करोड़ है, जाहिर उस जमाने में जो भी रहा हो 10 करोड़ 12 करोड़ जितना रहा हो, चूंकि पूरी दुनिया की आबादी जो है ऐसे ही 40-50 करोड़ रही होगी, देख सकते हैं, मैंने देखा था लेकिन अभी जहन में नहीं है तकरीबन इतनी आबादी। तो जब वहां पे दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी सब के सब बैत कर चुके थे, किसी न किसी के मातहत बैत कर चुके थे, इतनी बैत मिलने के बाद एक इंसान की बैत की इतनी फिक्र क्यों है, ये सवाल है ना, एक की बैत क्यों चाहिए। पूरा मक्का बैत कर चुका ऑलरेडी पहले ही से, मदीना पूरे मदीने से बैत ली जा चुकी है, 2 लोग और भी साथ में है, 3 लोग उसमें से आपको बार बार दिया गया, लेकिन उनके इनकी बैत की भी इतनी परवाह नहीं है, लेकिन एक बैत की परवाह है, यानी 27 रजब की शब में किसी और को नहीं बुलाया गया था कि आप भी आ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहां पे, मसाइल में नहीं उलझाना है कि चलो आप भी आ जाए, आप भी चले इस हद तक तो ले, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आप भी आ जाओ, अब्दुल्लाह इब्न उमर आप भी आ जाओ, नहीं, वहां पे हुसैन इब्न अली को बुलाया गया था। तो जब इतना सब बैत हो चुकी है तो एक बैत की इतनी परवाह क्यों है, अल्लाह अकबर। ये आज की मिसाल से समझाएं बात वाजे हो जाएगी। ये इसलिए है कि जैसे आज की दुनिया में पूरा अरब बैत किया हुआ है, पूरा 22 मुल्क अरब के बैत किए हुए हैं, पूरे 56 मुल्क मुसलमानों के बैत किए हुए हैं, पूरा यूरोप ने बैत की हुई थी, पूरा ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान कोरिया सब ने बैत की हुई थी, इतने 200 मुल्कों की बैत के बाद एक बैत की इतनी परवाह क्यों है। ये मसला सिर्फ पेट्रोल वेट्रोल का नहीं है, यहां पेट्रोल अगर कुछ कम भी था तो वो भी मिल गया, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन पेट्रोल का वेनेजुएला करता है वो भी मिल गया था भाई, अब तो बिल्कुल वाजे मिल गया था, बाकी सब अख्तियार में आ गए थे सब, लीबिया का पेट्रोल बहुत अच्छा होता है तो वो भी अख्तियार में पहले लिया जा चुका था, अरब के सारे गल्फ के ममालिक वो सब तो गुलामी बने हुए हैं, इराक तो अपना पेट्रोल बेच ही नहीं सकता, बेच दो लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा, इराक पेट्रोल बेचेगा पैसा कहाँ जाएगा, अमेरिका जाएगा, फिर वो भीख मांगे इतना अच्छा इतना दे दो, ये रोड बनना है, ये काम होना है, फला काम होना है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा रिलीज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए ताकि मेरे मुताबिक चलना है। सब पूरा इराक चाह रहा था कि अभी वजीर आजम किसे बनाया जाए, अमेरिका का नहीं नहीं बनने देंगे, तो नहीं बना। बैत का आलम यह है, कौन से इराक में जहां हुसैन इब्न अली मौजूद है, अब बात को समझे, जिस इराक में कब्र हुसैन इब्न अली भी है वहां पे इतनी भी आजादी नहीं है कि सब मिलकर सारी पार्टियां मिलकर अपना एक वजीर आजम बना दें। साफ कहा गया कि नहीं, नूरी मालिकी को नहीं बनना तो नहीं बने। इतनी बैत जो सब किए हुए थे, बाज ममालिक तो दूर दूर से कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन सभी ने बैत की हुई थी, तो एक बैत की इतनी जरूरत क्यों थी। यहीं से समझा जा सकता है कि पूरे आलम इस्लाम में दुश्मन भी किसे हुसैन इब्न अली का वारिस समझता था।
1: है हमारी दरसगा
2: कर्बला कर्बला,
1: है हमारी दरसगा
2: कर्बला कर्बला,
1: हक्का सीधा रास्ता
2: कर्बला कर्बला,
1: हक्का सीधा रास्ता
2: कर्बला कर्बला,
1: शहादतों का रास्ता
2: कर्बला कर्बला।
0: और ये उनको भी समझ में आता है कि एक जालिम को जालिमीन आके बैत कर लें तो उसमें कौन सा मजा है, जालिम को सपोर्ट करने के लिए जालिमीन खड़े हो जाएं। अब आप लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं कि नहीं, जालिम लोग आके मजलूमों को सपोर्ट करें, नहीं हो सकता भाई,

लेकिन ये उम्मीद नहीं रखें कि जिन्होंने जुल्म को बुनियाद बनाया हुआ है अपनी हुकूमतों की, वो जाके मजलूमों की बयत करें, मजलूमों का सपोर्ट करें, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करें। हाँ, वो इजरायली का सपोर्ट कर सकते हैं। तो जालिमों की बयत में जालिमों को मजा नहीं आया है, वो तो खुद ही बयत किए हुए हैं। अब कहे इबलीस के सामने सारे शैतान बयत किए हुए थे, इबलीस को बड़ा मजा आ रहा है। शैतान की बयत में इबलीस को क्या मजा आएगा? इबलीस को मजा आएगा कि कोई मोमिन मेरे सामने आके बयत करे। इबलीस मोमिनों के पास जाता है, शैतान तो ऑलरेडी बयत किए हुए हैं। यहीं से फर्क समझना शुरू हो जाता है इंसान के लिए कि किस बयत का असर होता है। और यही जुमला हुसैन इब्न अली ने आगाज करबला में पहले जुमले के तौर पर फरमाया था बिल्कुल वजाहत के साथ कि ये दो गिरोह है, इन्ना अहलो बैत नबुवह व मादनुर रसाला व मुख्तलफुल। ये जुमले आपके सबके सुने हुए हैं, लेकिन ये बार बार दोहराए जाते रहे। ये इसलिए नहीं दोहराए जाते रहे कि हमें आपको सवाब मिल जाए, ये इसलिए दोहराए जाते रहे कि दो गिरोह है, एक गिरोह है जो मादन रसालत से जुड़ा हुआ है, एक गिरोह है जो मलाइका की आमद रफ्त के मकाम से जुड़ा हुआ है, एक गिरोह है जो रसूलुल्लाह की नबूवत के मीरास से जुड़ा हुआ है। बिना फतहल्लाह व बिना खत्म अल्लाह, इस जुमले पे मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन गौर करें जल्दी से हमारे जवानान, चूंकि बहुत धोखा दिया। बिना फतहल्लाह व बिना खत्म, अल्लाह ने हमारे जरिए आगाज किया है और हमारे जरिए से अल्लाह इस कायनात का इख्तिताम करेगा। इसे बहुत ही अजमत और बहुत ही खूबसूरती छिपी हुई है। ये नहीं है कि आप अहले बैत को कहते हाँ अहले बैत भी सारे बंदों की तरह से, रसूलुल्लाह भी सारे बंदों के, नहीं, हमारे और तुम्हारे जरिए से अल्लाह ने कोई आगाज नहीं किया है। बनी उमैया और बनी अब्बास के जरिए से नहीं हुआ है, किसी इंसान के जरिए से नहीं हुआ, किसी मोमिन के जरिए से नहीं हुआ है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह और अहले बैत कह सकते हैं कि बिना फतहल्लाह अल्लाह ने हमारे जरिए से शुरू किया है, आगाज किया है, वह बिना खत्म और हमारे जरिए से अख्ताम तक पहुंचने वाला है। लेकिन दूसरा नुकता भी यही भी छुपा हुआ है कि हमने आगाज नहीं किया है, आगाज करने वाली जात अल्लाह की है। अब शेर व शायरी के धोखे में नहीं पड़ जाएं, हमने नहीं आगाज किया है, अल्लाह ने आगाज किया है, जरिया हम है। बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म। और फिर यजीद क्या है? यजीद रजलुन फासिकुन शारिबुल खम्र कातुल नस्ल मुहर्रमा मौलुन बिलफिस। यजीद जो शारिब है, शराब पीने वाला है, शारिबुल खम्र है। अब ये मसला मैं कैसे बयान करूं कि शराब को इतना राइज कर दिया है हुकूमतों ने कि जिनको बहुत ज्यादा ड्यूटीज मिलती हैं और बहुत ज्यादा उस पर टैक्स मिलता है कि यहां तक कि मालूम है, ये नहीं आप लोग सोचते हैं मौलवी लोग नहीं मालूम होगा, मालूम है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग शराब पीते हैं। और शराब पीने वाले लोग कभी मजलिस में आकर एक मजलिस में बैठ के चंद तवरुक बांट के फिर उन्हें मौलवी लोग भी बता देते कि नहीं तुम तो मजलिस में आ गए तो तुम पाक हो गए, तुम सब कुछ हो गया, तो ये तुम्हारी अपनी मजलिस हो सकती है, ये हुसैन इब्न अली की मजलिस नहीं हो सकती। जो हुसैन इब्न अली की मजलिस में आएंगे तो पहला जुमला तहरीक करबला, करबला के मूवमेंट का पहला जुमला ये होगा कि यजीद शारिबुल खम्र है और शारिबुल खम्र यजीदी है। मजलिस में आके कोई हुसैनी नहीं बन जाएगा, जो हुसैनी और यजीदी के लिए सिफात के जरिए से पहचाना जाएगा। इमाम ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं मिसली ला युबायो मिसला, मेरे जैसा यजीद जैसे कि मेरे, पहले सिफात बता कि मैं क्या हूं, मेरी राह पे चलने वाले क्या हैं, मुझसे राबिता रखने वाले क्या हैं, ये सिलसिला कौन सा है, ये सिलसिला कब तक रहने वाला है, कब तक रहने वाला है। ये नुक्ता ध्यान दें, ये नहीं कहा कि ये सब 61 हिजरी की बात है, ये एक सिलसिला है जो रहने वाला है। और यजीद के सिफात क्या है? यजीद फासिक है, फासिक है जो दीन से निकल गया है। फसका जैसे दीन से निकल जाना, जैसे खजूर से उसका बीज निकल जाए, इस तरह से यजीद निकल गया है। शारिबुल खम्र कातुल नफ्सिल मुहर्रमा, अपने हुकूमत के लिए आसानी से इंसानों को कत्ल करा सकता है, मरवा सकता है, जलील कर सकता है, तोहीन कर सकता है, अपने फायदे के लिए
اپنے فائدے کے لیے ایک مومن کو آسانی سے ذلیل کر کہا قتل تو نہیں کیا، نہیں کبھی کسی کے قتل کرنے سے زیادہ برا اس کو ذلیل کر دینا ہوتا ہے۔

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Alhamdulillah, Pradhan pahunch gaye. Jaldi kare, jaldi kare.
2: उस दिन जब तुमने अपने गंदे मुंह से हिलाल का नाम लिया, कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हिलाल तक पहुंचने की, तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि मेरे शौहर की चुगली करो।
3: अपने अमीर इब्ने जियाद से कह देना कि मेरे दामाद का दिमाग खराब हो गया है, मेरा कत्ल ही उसके हक में बेहतर है।
1: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत में मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूँ।
4: इस कदर हराम लुकमा खाने वाली कैसे हमें नजर नहीं आई?
2: इस बार फर्क है।
3: क्या फर्क है?
2: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो। कबूल कर लिया।
5: ये चोर आखिर कौन था?
4: सामिया, हिलाल की माँ।
6: कूफे वालों की बातों को सुनो, लेकिन यकीन हरगिज़ मत करना।
2: सही फरमाया, लेकिन इस बार लोगों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आपका बेटा करबला में है।
4: तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई, ना ही कोई खबर आई। अब तुम हकीकत बता दो और मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना सबके सामने तुम्हें जलील कर दूंगी।
5: बाहर निकालो इसे।
7: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। इस आदमी ने तुम्हारे

0: या असल बात बताओ और मेरी माँ को वापस पलटा दो, वरना देर नहीं लगाऊंगी तुम्हें रुसवा करने में।
1: इसे बाहर कर दो।
0: मैं तुम्हारी नियत से बाखबर हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं? बताओ मुझे। अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी।
1: तुम्हारा जो दिल करता है करो।
2: बाहर निकालो इसे।
3: नईम,
0: इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुकुम से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला।
4: ज्यादा ना बोलो औरत।
1: खामोश हो जाओ झूठी औरत, डूब मरो। झूठ बोल रही है ये।
0: सुना तुमने बहादुर आदमी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया। पता है तुम्हें, तुम्हारी बीवी के कत्ल का हुक्म दिया।
1: बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे।
0: तुम्हारे बच्चों को यतीम किया है इसने।
1: बाहर निकालो।
0: झूठ
1: बोल रही है ये, एकदम झूठ बोल रही है। बाहर निकालो इसे।
5: आराम से,
0: मेरी माँ का।
1: बाहर कर दो इसे।
0: मुझे
1: देखा, यही सुनना बचा था कि हमारे ऊपर औरत के कत्ल का इल्जाम लगाया जाए। इनास, ये क्या हुआ?
0: मेरी माँ कहाँ है? बताओ मुझे नायला, मेरी माँ कहाँ है?
6: शांत हो जाइए, बस कीजिए, चिल्लाने से
0: मेरी माँ कहाँ है नायला?
6: नहीं, क्या ये सच कह रही है? तुम्हारी बीवी को इसी तरह कत्ल किया गया है, ये तुमने किया या बाबा ने? बोलो। फिर इसने सही कहा है। कैसे इंसान है बाबा? इसी घर में रहने वालों के साथ आपने ऐसा किया? मुझे मक्का के रास्तों में बेवा कर दिया, बेटे की सौजा को कत्ल कर दिया। मेरी माँ को कब कत्ल करने वाले हैं? खतरनाक है।
1: तुम भी सच मान रही हो ना?
7: मुझे अम्मी के पास जाना है।
6: तुम पर कुर्बान हो जाऊं, ऐसे मत रो, झूठ बोला है। इसकी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह गायब हो गई है। वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही है ताकि उसे तलाश कर सके, इसीलिए झूठ बोल रही है। मेरी जान, ऐसे मत रो, झूठ बोला है उसने, यकीन मत कर।
7: तो अब्बू ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? वो सच कह रहे थे।
6: उसने ऐसे ही कहा है।
7: मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे दादा से बहुत डर लगता है। मुझे इस घर से ले चलो, अब्बा के पास ले चलो।
6: ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम रो मत मेरी जान, ठीक है? अभी तुमको ले चलती हूँ, मत रो बेटा।
1: तुमने भी यकीन कर लिया ना? जो भी इस घर में घुस आएगा तुम सबकी बात पर यकीन कर लोगी, सिवाय मेरे।
6: अगर ये झूठ नहीं है तो बताओ तलमा कहाँ है? बताओ कहाँ है वो?
1: अगर मैं जानता होता तो उसका सर काम कर देता। इसमें शक ना करो, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। अगर जाना ही है तो तुम यही रुको, मैं खुद चला जाता हूँ।

0: कौन सी जगह है?
1: नैनेवा। क्या मेहमान नवाजी है नैनेवा में? इससे ज्यादा थे, बीच रास्ते में कुछ फरार हो गए। अगर आपका हुक्म हो तो उनके लिए फरमान जारी कर दिया जाए कि उन्हें कहीं अमान ना दिया जाए, ना खुद उन्हें ना उनके खानदान वालों को। अलवान बिन हज्जाज कहाँ है?
2: उस तरफ।
1: मेरे वापस आने तक यहीं रहना।
3: आज की रात पहली बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जनाब बिन हज्जाज। जब भी मैं कूफे पलटने का इरादा करता हूं तो किसी बहाने से रोक लिया जाता हूं। मुझ पर खाने पीने और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, मैं इससे ज्यादा और यहां नहीं रुक सकता।
4: मरहबा, देखो कौन आया है। इब्ने आहद, खुश आमदीद। हक यह है कि मैदान तुम्हारे बिना खाली है जंगजू। इतना गुस्सा कर रहे थे, देखो गैब से गवाह आ गया। जो खत लेकर आए थे उसमें लिखा था कि तीरंदाजी में तुम कूफियों के दरमियान मशहूर हो।
1: कूफे का वाहिद तीरंदाज, दुख्तरे औहद का उस्ताद, औहद का दामाद, कम मशहूर नहीं है जनाब।
4: खत में ताकीद थी कि यहां रुको और उमर इब्ने साद के लश्कर में खिदमत करो। इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल, ये पहन लो।
1: मुबारक हो।

मेरे अल्लाह, ए रहम करने वाले, ए मेहरबान खुदा, तू इस बात का शाहिद और नाजिर है कि बगैर तहारत और वुजू के मैंने अपने बेटे के मुंह में लुकमा नहीं खिलाया। माना मैंने नमाज शब में तेरी बारगाह में इल्तिजा नहीं की कि मेरा बेटा कभी जालिम और जाबिर का हम नशीन ना बने, ए खुदा। कहां मुझसे खता हुई, कहां मैंने गलती की है। मैंने हमेशा अपने बेटे का शिकवा किया, लेकिन कभी भी उसकी तरबियत में कोताही नहीं की और तेरे फजल और करम पे शक नहीं किया। मीसम ने सच कहा था, मीसम कहता था सामिया खुदाई तदबीर का इंतजार करो। मैंने नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना।

0: खत लिखा और खुद को ही परेशानी में डाला, और अब तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। खुदाया, खुदाया, ए खुदा मेरी मदद कर। ए खुदा मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खुद से। ए खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि माबूद मैंने तुझसे गफलत की। ए खुदा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे या अली, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। ए अली, आपकी मजलूमियत और हक्कानियत मैंने महसूस की है, या अली मेरी शिफात कीजिए। ए खुदा मुझे माफ कर दे। ए खुदा मेरे बेटे इस्माइल, मेरा हिलाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसका सर तन से जुदा हो जाए लेकिन वो किसी मजलूम का खून ना बहाए। ए खुदा मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा ताकि तेरे करीब हो सकूं। खुदाया, ए खुदा मेरी मदद फरमा।
1: काश कि मैं मर गया होता और ये चंगे लिबास पहनने का वक्त नहीं आता।
2: क्यों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो? घर वापस चले जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है।
1: विनोहद, अगर आज भी तुम अपनी बात,
2: तुम घर वापस चले जाओगे ना कि नायला के पास?
1: ठीक है नायला, नायला, मैं पहले ही इस जहन्नुम में चल रहा हूँ।
3: मैं इंतजाम करता हूँ जी।
2: हकीकतन जनाब इब्ने हज्जाज, एक अमानत लेकर आया हूँ जनाब इब्ने साद के लिए।
4: आधा लश्कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया इब्ने औहद, तुम्हारे अंदर चंद सिपाहियों को रोकने की भी सलाहियत नहीं है कि किस अहमक ने तुम्हारे हवाले अमानत की है?
2: खुदा का शुक्र कि तुम्हारी जैसी बहादुरी मुझ में नहीं है। मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं बगैर खौफ के गुफ्तगु कर सकता हूँ।
4: अस्तग़फिरुल्लाह, क्या अमानत लाए हो?
2: नैनेवा की तरफ लश्कर लेकर निकलने से पहले मेरे हवाले एक खत किया है।
4: कहाँ है?
2: क्योंकि अमीर ने मुझे अमानतदार समझा था, लिहाजा मैं अपने हाथों से यह अमानत तुम्हें दे रहा हूं।
4: कोई जरूरत नहीं, जंग का मैदान तुम्हारे सुकून की जगह नहीं है।
2: बेवकूफ आदमी,
1: मैं इसीलिए आया था कि दोबारा कूफे पलट जाऊं। नायला की कसम, अगर मुझे कूफे वापस नहीं भेजा तो मैं ऐसी जंग में अपनी जान दे दूंगा जिसका इल्जाम तमाम लश्कर के सर आएगा।
2: बकवास बंद करो, मैंने कहा कि अगर अभी खामोशी इख्तियार कर लो, जंग शुरू होने से पहले तुम्हें रवाना कर दूंगा।
1: अब तक जितना मैंने तुम्हें देखा है, कोई अहमक ही होगा जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा।
5: बाबा, अब खत्म हो गया।
1: बच्चे को क्यों करबला लाए हो?
2: जरा उस तरफ जाओ, वहां खाना भी है और पानी भी।
6: किनारे हटो।
7: आखिरत की सजा का खौफ मत करो, ये ठीक नहीं। वहां बख्श दिए जाओ, इत्मीनान से इसके सर को तन से जुदा करो।
8: आपने कहा कि इसका खून हलाल है तो हलाल है,
7: हलाल,
8: लेकिन माफ कीजिए, मुश्किल ये है कि मेरा दिल बहुत बहुत कमजोर

0: जरा फिर से।
1: मैं हरगिज इस काम को अंजाम देने की ताकत नहीं रखता।
2: खून से डरते हो?
1: थोड़ा सा।
0: घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त, दो बार सर जुदा करोगे तो आदत हो जाएगी।
1: नहीं, मैं तमाम मुकद्दसात की कसम खाकर कहता हूँ कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता।
2: यहाँ क्या कर रहे हो बुजदिल बदबख्त इंसान?
1: सबको आने का हुक्म दिया गया था, किसी को इख्तियार नहीं था। कोई माल गनीमत लेने आया था तो

0: आया था इनाम हासिल करने के लिए। मैं गुलामों को बेचता हूँ, गुलामों को। और तुम सब जिहाद का सवाब लेने के लिए। मैं भी इसीलिए आया हूँ कि कनीज वो गुलाम को लेकर यहाँ से जाऊँ और उन्हें बेच दूँ। बस
1: उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, सब जंग के लिए आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी
2: चलो।
3: जो आपने कहा वो आपका हुक्म था या खत में लाया हूँ उसमें फरमान था?
1: मेरे अमीर इब्ने ज़ियाद का हुक्म खुद मेरा हुक्म भी है।
3: बस मैं लश्कर को लेकर जाता हूँ फुरात के रास्ते को बंद करने।
1: तुम भी हमारे साथ रहो फुरात के रास्ते को बंद करने के लिए। अपने कमांडर को भी साथ लेते आओ।
3: जसारत ना हो लेकिन इतनी तलवार चलाने वालों के बाद पानी बंद करना मेरी नजर में सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं। अगर हमला कर दें तो जोहर से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा।
4: सुना है कि उनके काफिले के ज्यादातर लोग औरतें और बच्चे हैं। अगर फुरात का रास्ता बंद कर दें तो सब मारे जाएंगे।
1: आज का दिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान के खून का बदला लेने का दिन है। हम वही काम करेंगे कि सब प्यासे मर जाएं।
3: खुदा उसे माफ करे।
4: हुसैन इब्ने अली ने तो कुछ नहीं किया था।
1: उनके बाद बाप का बदला उसके बेटे से लिया जाएगा।
4: वैसे तुम तो जनाब हानी के साथ थे ना? मैंने सुना है कि उन दिनों अली असलन मदीने में मौजूद नहीं थे।
1: खामोश हो जाओ। इतने साथ के सिपाहियों का लिबास पहनकर तुम अली की तरफदारी बिल्कुल मत करो।
4: एक तरफ अपने लश्कर की कसरत पर इतना फक्र है और दूसरी तरफ पानी बंद करने की तैयारी। वक्त पड़ेगा तो तलवार भी चलाओगे।
1: जंग तो होना ही है बच्चे। जो भी हमारे दीन के मुकाबले में आएगा और बैत के लिए सर नहीं झुकाएगा कत्ल कर दिया जाएगा।
4: कौन सा दीन?
3: हिलाल, एहतियातन पानी बंद करने के बाद शायद वो लोग बैत के लिए सर खम कर दें और हमारे दरमियान जंग ही ना हो। सलाम हो हमारे अमीर इब्ने ज़ियाद पर।
1: क्यों ऐसी बात कर रहे हो नईम?
3: क्यों
1: क्यों? इब्ने ज़ियाद ने यजीद को सर देने का वादा किया है। जो लोग खैमे के बाहर हैं वो सब जमीन और माल गनीमत के लालच में यहाँ आए हैं। अभी कुछ मिला नहीं और कह रहे हो जंग नहीं होगी।
5: अरे लोगों, आज तुम लोगों ने जिसका रास्ता रोका है जानते हो वो इस सरजमीन पर रसूल खुदा का तन्हा फरजंद है। क्या तुम्हारे दरमियान में कोई एक ऐसा है जिसने हमारे इमाम से कोई खता देखी हो सिवाय मेहरबानी मोहब्बत और दिलसोजी के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात को हल करने में गुजार दी। अगर आज वो इस सरजमीन पर मुश्किलात में घिरा है तो तुम्हारी दावत पर आया था वो। खामोश क्यों हो सुहेल? अबू हुनैन, अभी तुम्हारे खुतूत की स्याही खुश्क नहीं हुई किस तरह तुम लोग आले रसूल पर तलवार खींचे हुए हो।
1: सब अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना चाहिए। झूठे मक्कार इंसान, वो चाहता है कि तुम्हारे ईमान को छीन ले।
5: वाह वाह, अम्र बिन हज्जाजे जुबैदी, शहीद हानी बिन उर्वा की जौजा के भाई, कहां तुम और कहां ये अबा अब्दुल्लाह के मुखालिफों की सफ़े?
1: सब जानते हैं कि मेरी और हानि की राह एक दूसरे से जुदा है।
5: अगर रास्ते अलग हैं तो फिर खत क्यों लिखा, क्यों वादा किया? बहते हुए दरिया, फलदार दरख्त, बिन हज्जाज, क्या तुमने नहीं कहा था कि दिल आपके इंतजार की ताकत नहीं रखता?
1: झूठ बोलता है झूठा मक्कार।
5: अगर मर्द नहीं हो और मदद नहीं कर सकते तो कम अज कम अली के शियों से सीखो कि वो सब बयाबान पहाड़ों में जाके बसे ताकि इमाम के मुकाबले तलवार न उठे। अगरचे इनमें भी मर्दानगी नहीं थी, मदद नहीं की, फकत दुआ के लिए हाथ उठाया, अलबत्ता ऐसी दुआ जो ना कबूल होगी ना उसका फायदा है। वो चले गए ताकि कम अज कम आले रसूल के दिलों में वहशत और खौफ पैदा ना हो सके।
6: किसके बारे में कह रहे हैं जनाब हबीब?
2: आपकी आवाज तो सुन रहा हूँ मगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
5: वादे की वफा, मेहमान नवाजी, मर्दान की वो आजादी।

0: शाबाशी हो तुम लोगों को, क्या हुआ कि सुन्नत पैगंबर तुम्हारे लिए नाशना हो गई।
1: आपने देखा नहीं है कि किस तरह मखालिफों के सर को तन से जुदा करते हैं, उनकी सालाना इमदाद को रोक देते हैं, हत्ता कि औरतों और बच्चों किसी पर रहम नहीं करते।
2: मत करने दो, ऐसा मत करने दो कि तुम्हें हक के रास्ते से जुदा कर दे।
1: हम सब मजबूर हैं, हम सब लश्कर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन लश्कर को छोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होगा।
0: ये कहे ना कि इब्ने ज़ियाद ने तुम्हें और दूसरे कबीले के लोगों को जबरदस्ती जमा कर लिया है, ये फरजंदे रसूल खुदा के मुकाबले कोई काबिले कबूल वजह नहीं हो सकती। मैं उस दिन को देख रहा हूँ कि रोजे महशर तुम होगे और तुम्हारी शर्मिंदा निगाहें उनकी माँ फातिमा जहरा की निगाहों के सामने होंगी।
3: अगर हुसैन इब्ने अली हमारी भलाई चाहते हैं तो कहो कि तलवार ना उठाएं ताकि उनके नाना की उम्मत एक नई जंग से निजात पाए।
0: नहीं, आज उम्मत के लिए इमामत को साबित करने का दिन नहीं है, मगर पूरी उम्र आजाद जिंदगी नहीं गुजारी।
1: क्या पूरी जिंदगी गुजार दी है तो एक दिन और सही।
2: तुम लोग शैतानी बातों पर बिल्कुल कान न धरना ताकि तुम्हारा जहन उसके बातिल ख्यालों में गिरफ्तार ना हो। कसाब या कसाब,
4: कसाब या कसाब, कसाब या कसाब, कसाब या कसाब,
5: कसाब या कसाब।
6: बहुत हुआ इससे ज्यादा बातें, अब मेरे वापस जाने का वक्त आ गया।
7: अभी रुको, फिलहाल जैसे सभी कर रहे हैं वैसा, बिल्कुल वैसा ही करो।
5: कसाब या कसाब।
6: बहुत देर तक उन लोगों के साथ रह चुका हूं, इन लोगों की मक्कारी को अच्छी तरह जान गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
5: कसाब या कसाब,
2: खामोश, अपने अंजाम से डरो।
7: यही रुको,
8: क्या देख नहीं रहे हो हिलाल के खिलाफ तलवार उठाई है? क्यों कुछ नहीं करते?
7: मैंने कहा सब्र करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मुझसे इस वक्त कुछ नहीं हो सकता।
8: ठीक है, आप ऐसे ही खड़े रहें।

0: आपके मेहमान आए हैं जनाबे औहद।
1: बालिया, तुम तो शाम गई थी।
2: तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो? तुम्हारे आसपास की औरतें मेरी मुट्ठी में हैं। बेटियों का सौदा करने वाले बेगैरत।

0: एक बार फिर तुम्हारे खानदान का खून उसकी रगों में जोश मारने लगा है, और ये लड़की भी तुम्हारी और अपनी माँ की तरह इतना ज्यादा हराम माल हमारे दस्तरखान पर ले आई कि अगर मैं उसके बदले अपने तमाम माल को सदका दे दूं और बची हुई उम्र को रोजे में गुजार दूं ताकि बदन का गोश्त हराम माल से पाक हो जाए, तब भी मुंह से बू नहीं जाएगी। इस तरह का तैयार किया हुआ जहर भी अब तुम ही पियो, तुम और तुम्हारी चहेती। मैं बेगैरत हूं, मैं बेगैरत हूं कि इसको कत्ल करने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं बेगैरत हूं कि तुम्हारे पास इसकी इल्तिजा लेकर आया हूं। तुमने मुझे खुद फंसाया है, अब तुम खुद ही इससे निजात दिलाओगे।
1: अल्लाह अकबर, देख रही हो, देख रहे हो कि खुदा ने नेमत किसे अता फरमाई है, बताओ मैं क्या करूं।
0: कुछ लोगों ने इस वाकये को आधा अधूरा सुना है और एक दूसरे को बता रहे हैं। खुदा की कसम, अगर शियों को पता चल जाए कि वो जिंदा है तो मेरी निगाहों के सामने उसके सिर को कलम कर देंगे। कुछ ऐसा करो कि कूफे से चली जाए।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम अंधे हो गए अबू शमीन? कूफे के हालात नहीं जानते कि कैसे खतरनाक हो गए हैं?
0: तुम्हारी पहुंच बहुत है, तभी फरियाद लेकर आया हूं मैं।
1: कूफे के हालात ऐसे नहीं रहे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ा सब्र करता और इस बहादुर लड़की की कद्र को समझता, के बाद तुम्हारे लिए इफ्तिखार और सरबुलंदी का सबब बनती।
0: जो औलाद राहे हक को ना पहचाने वो हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार नहीं हो सकती, हमारे लिए वबाले दुनिया और आखिरत है।
2: हक को नहीं पहचाना?
0: तुम हक के बारे में क्या जानती हो?
2: मुझे जानने की जरूरत नहीं है, यही काफी है कि आप जानते हैं कि उम्मत का क्या हाल हुआ है। नहीं देखते, बदबख्ती और इख्तलाफ का असली सबब वही है जिसके लिए आपने अपनी पूरी उम्र गरेबान को चाक किया, समझे आप?
0: तुम गोद में थी जब अली तख्ते हुकूमत पर बैठे थे, तुम्हारी गलती नहीं है कि उन्हें ना पहचाना। जो भी आली अली के खिलाफ काम किया गया वो बेनतीजा रहा, तुम्हारा फायदा खानदाने पैगंबर की नाबूदी में था।
1: अच्छा हुआ अबू शमीन मेरे पास गदाई के लिए आ गए, वरना मेरे सर को तन से जुदा कर देते।
2: आखिर आप कब इस बात को समझेंगे कि अंबियों की जन्नत मालो सर से बनती है, ना कि अदलो इंसाफ से? अगर मालो दौलत होगी तो जन्नत भी बना सकते हो, वरना ऐसे ही रह जाओगे।
0: ले लो नासबियों की मालो दौलत और इज्जत।
2: अगर अमवी बुरे होते तो शियाने अली में से किसी का हाथ गदाई में उनके सामने ना होता। तुमने कितने अलवियों को देखा है जो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, बताओ मुझे?
0: अफसोस है मुझ पर कि आले अली की अदावत हमारे दिमाग तक सरायत कर चुकी थी और उस समय मैं बेखबर था।
2: खुदा की कसम, अपने किए पर मैं जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ।
0: निकल जाओ यहाँ से, अपने मुंह को बंद कर लो। किस चीज से पशमान नहीं हो, कत्ल से या किसी? छोड़ो मुझे,
1: चुप हो जा। आखिर मुंह से बात निकल गई, मेरे खानदान और कबीले को जो कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उस शख्स के होते हुए दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, खुद तुम्हें कत्ल करके दफन कर देगा। तुम्हारा कूफे में रहना और इस दीवाने के घर रहना बिल्कुल सही

0: तोहफे से निकलने की इजाजत खुद दूंगा। अगर तुम खुद मर्द होते तो पिछले सांप के खौफ से तुम खुद भी कूफे में नहीं रुकते जनाब।
1: तुमने तो लश्कर को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब चलो शाम। मेरी माँ कब तक इंतजार करेगी? आपने तो मुझसे वादा किया था, क्या भूल गए हो?
2: नहीं, हमारा ये वादा नहीं था। वादा था जंग के बाद शाम के लिए रवाना होंगे, ना कि लश्कर को पहुंचाने के बाद।
1: जंग तो बच्चों की जगह नहीं है।
2: 100 बार तुम्हें कहा होगा कि अलवान जंग बच्चों की जगह नहीं है, लेकिन तुमने सुना नहीं। शायद बाप से ज्यादा चाचा के कारनामे तुम्हारे लिए अजीज थे। अब जो मैंने कहा वही होगा, जंग के बाद निकलेंगे।
1: मैं तो कहता हूँ बाबा, खुदा के लिए ना रुकिए।
3: आली जनाब, हुक्म आया है कि फरार करने वाले जिन्होंने अमीर को कत्ल करने की साजिश की थी, लश्कर के सामने उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। उन लोगों ने वसीयत के लिए मोहलत मांगी थी।
2: नमाज के बाद आता हूँ।
1: मर्द नहीं है कि अपने वादे को पूरा करे। आप मत जाइए, मैं खुद अकेले शाम के रास्ते को तलाश कर लूंगा।
4: मुसाफिर कूफे के लिए, मुसाफिर कूफे के लिए।
1: क्यों कूफे?
4: कूफे जाओगे?
2: तुम ही बार बार चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी माँ कूफे में है, ना कि शाम में।
1: वापस आ गए?
2: वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी।
1: वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी। बाबा झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। झूठ मत बोलो बाबा।
2: इसको ले जाओ कूफे, कूफे ले जाओ।
4: पानी, पानी।
2: औहद के तिजारत खाने में जाना, तुम्हारी माँ की कब्र वही है। उसकी माँ की कब्र पर इतना रोना कि दिल हल्का हो जाए।
5: हुक्म आया है कि लश्कर के दरमियान अमीर के हुक्म से बगावत करने वालों की गर्दन को उड़ा दिया जाए। आपने वसीयत के लिए मोहलत चाही थी।
2: बैठ जाओ।
6: मैं नहीं चाहता कि फजूल में तुम लोगों का खून बहाया जाए।
7: मुझे मरना गवारा है, लेकिन फरजंदे फातिमा के खिलाफ मैं तलवार कभी नहीं उठा सकता।
6: बेगैरत, तुमने तो अपनी बहन के कत्ल से भी खौफ नहीं खाया। तुम्हें आले रसूल के कत्ल से क्या शर्म? खुदा करे मैं उस जंग से पहले मर जाऊं।
4: मर जाओ, बाढ़ में जाओ, मर जाओ।
2: 100 साल तक भी मैं तुम्हारे कत्ल का सोच नहीं सकता। 100 साल। ये मत सोचना कि मेरा दिल नरम हो गया। आजकल मेरी आरज़ू जनाबे औहद का एतबार जीतना है। वो चाह रहे थे तुम मैदाने जंग में हाजिर रहो, बस तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर यहाँ से बचकर निकल गए तो नायला से कहना कि अपने बेगैरत चचा जाद भाई को मारने की वजह से उसने मुझे जाने दिया। भाग जाओ।

0: सिपाहियों फरार हो रहे हैं, पकड़ो, वो फरार हो रहे हैं।
1: चलो।
2: Get down in the fight!

0: अपने शबो रोज की कद्र समझो नायला, खुद से ही बैठो, उठो, रास्ता चलो, सो, अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो कैसे लिपटा हुआ है, उसे आराम मिल गया है, सुकून से सो रहा है, एकदम इत्मीनान से। जैसे ही नाव को काट कर जुदा करेंगे, खौफ और इज़्तिराब पूरे वजूद को घेर लेगा, जैसे जैसे तुम्हारा दिल तुमसे अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा हो और खाक में तड़पने लगा हो।
1: हिलाल के लिए शायद ऐसा हो, लेकिन आया के लिए फिक्र ना करें। मैंने उसे समझा दिया है, वो घर में है अपने दोनों बच्चों के साथ, सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: हातिब जान, तुमने कहा ना भूख लगी है, फिर खाना क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा खाना खा लो, चलो मुंह खोलो, चलो खाओ मेरे हाथों से।
3: बेमजा है, मैं नहीं खाऊंगा, हटाओ इसे, यहाँ से निकलो।
2: ये क्या किया?
4: यहाँ क्या हो रहा है? अगर बच्चे को संभालना नहीं आता तो मुझे बोल देती, सारी चीजें फैला दी है। क्यों इतना रो रहे हो हाथी? क्या हुआ है? सुबह से शाम तक रोते रहते हो, गले में तकलीफ हो जाएगी। देखो कितना गर्म है, बुखार है बहुत तेज। अगर तुम्हें सहमत ना हो और दरवाजा खोल सकती हो तो खोल दो।
2: देखती हूँ।
4: क्यों खाना नहीं खा रहे हो? इस तरह मर जाओगे बच्चे।
3: काश के मर जाओ।

0: तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? बानो, कोई कासिद आया है, वो बात करना चाहता है। तुम इसका ख्याल रखो। फरमाइए।
1: सलामुन अलैकुम। घर के किसी मर्द या बड़े से बात कराइए।
0: मैं बड़ी हूँ, फरमाइए।
1: जनाब के लिए मैं करबला से अहम खत लेकर आया हूँ, उन्हें देना चाहूँगा।
0: अभी वो घर में नहीं है, बाद में आना।
1: बाद में यानी कब? मुझे खत देने का हुक्म दिया गया है।
0: क्या कहा? खत कहाँ से लेकर आए हो?
1: करबला। मुझसे कहा गया है कि खुद उन्हें सौंपा जाए।
0: ना डरो, मैं उनकी जौजा हूँ, खत उन तक मैं पहुँचा दूंगी। फी अमानिल्लाह।
1: मेरा वजीफा है कि खुद उन तक मैं पहुंचाऊं। खातून, मेरी बात सुनिए।
0: ये
2: आहार, तुम्हारा खत आया है।
3: शाबाशी हो, क्या मुसीबत आ पड़ी है हम पर। एक खुदा, आया ने सही कहा, 10 दिन से मैं यहाँ हूँ। अगर दोनों बच्चे मुझसे ये पूछे कि क्यों मेरी माँ को दफन किया है, अगर उन्हें मालूम हो जाए क्या मुसीबत उनकी माँ पर पड़ी है, तो मैं मर जाऊंगी। कुर्बान जाओ उस बेटी पर जिसने ना समझी मैं उस घर में कदम रखा। नहीं है कि नाइला ने तुम्हें ऐसे बाप के घर में पनाह दी है।
4: बाबा घर पे नहीं है
3: ना? एक शख्स करबला से आया, मुझ में सब्र की ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद हिलाल की कोई खबर लेकर आया होगा, इसलिए मैंने ले लिया।

0: लिखा है?
1: तुम्हारे दामाद इब्ने हनीफ का खून खलीफा के हुक्म की मुखालफत की वजह से जहाँ पर भी वो हो और जिस हालत में हो हलाल है, और उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद बिल्कुल ना की जाए।

पैसा इंपोस्ट लगा हुआ है, उससे आगे निकले कस्टम्स है, अब कस्टम्स से बैगेज उठा के आप चले हैं तो फिर दो साइन पोस्ट है, डिक्लेरेशन के लिए लाल साइन पोस्ट है, डिक्लेरेशन कुछ ना हो तो ग्रीन पोस्ट है, इसे साइन पोस्ट कहा जाता है, निशानी है या नहीं। आयत इलाही से मुराद वो निशानियां हैं, वो साइन पोस्ट है कि जो हमें खुदा तक पहुंचा है। ये है मुख्तसर खुलासा आयत इलाही का कि हर वो शय, हर वो निशानी कि जो हमें खुदा तक पहुंचा है, ये है अल्लाह की निशानी आयत खुदा। हमारे ज़माने में, हमारे दौर में, हमारे उलमा और मराजे और मुज्तहिदीन को भी आयतुल्लाह का लक़ब दिया जाता है। आयतुल्लाह का मतलब क्या, यानी अल्लाह की निशानी। एक शख्स मुझसे कह रहा था, मुझसे कह रहा था कि सिर्फ इन्हीं को क्यों आयतुल्लाह कहा जाए, क्या हम अल्लाह की निशानी हैं? नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, हर वो बंदा जो दूसरों को खुदा की याद दिलाए वो खुदा की निशानी है, ये नहीं है। एक शख्स हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद अस-सादिक सलावातुल्लाहि वसलामुहु अलैहि की खिदमत में आता है, सवाल करता है कि आपके जद्दे अमजद ने ये फरमाया है कि उलमाए इस्लाम के चेहरों को देखना इबादत है, यकीनन इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं, उलमाए हैं इस्लाम और उलमा की बात की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो महज लिबास पहनते शेरवानी पहन के आ जाते हैं, हाँ मेरी तरह ये टोपी पहन के आ गए बस मौलाना बन गए, आलिम बन गए, या मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी बसर कर दी कुरान समझ मुज्तहिदी उलमा, उनके चेहरों को तुम देखना इबादत है। कहा आप ये समझाइए कि इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। खूबसूरत बात इमाम ने कही, आपने फरमाया कि इससे मुराद वो उलमा है जिनके चेहरों को जब तुम देखो तो खुदा याद आ जाए। अगर ऐसे उलमा सामने आ जाए कि जिनके चेहरों को देखकर खुदा नहीं दुनिया ज्यादा याद आए, तो समझ लेना ये तुम्हारे लिए बाइस फितना है। यानी इसके जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। भाई देखिए, इस्लाम के अंदर सिर्फ इल्म का होना कमाल नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास इल्म है, कुरानी इल्म की बात कर रहा हूँ, हदीसों का भी इल्म है, बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये पैगाम कौम सुने कि सिर्फ इल्म के होने में कमाल नहीं, इल्म के साथ तक्वा इलाही ज़रूरत है। अगर सिर्फ इल्म ही में कमाल होता तो आज आलम वक्त में इबलीस का भी शुमार होता है या नहीं। तो आयतुल्लाह कहते हैं उसे कि जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, जिसको देखकर पैगंबर का तसव्वुर आए, इमामों का तसव्वुर ख्याल में आए, आखिरत बंदा याद करने लगे। आयत खुदा से मुराद वो निशानियां, वो साइन पोस्ट जो इवेंचुअली हमें खुदा तक पहुंचाए, इससे मुराद। अब कुरान मजीद के अंदर आयत खुदा जो है, साइंस निशानियाँ जो हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं और मुख्तलिफ उसके मतालिब हैं और मानी हैं कुरान मजीद के अंदर। और मैं ये चाहता हूँ कि आज और आने वाली 3-4 मजलिसों में इंशाल्लाह इन्हीं आयात के बारे में ज़रूरी बातों पर गौर किया जाए और इनसे जो पैगामात हमें हासिल होते हैं वो आवाम तक पहुँचाया जाए। आयत खुदा यानी अल्लाह की निशानियाँ, कुरान मजीद के अंदर बारहा आयात आयात आयात का जिक्र आया है। क्या मतलब है? एक मुराद, एक मतलब ये, खुद कुरान मजीद की आयतें, जिसे हम अंग्रेजी में कुरानिक वर्सेस कहते हैं, है या नहीं। भाई आदतन इस लफ्ज को, आयत या आयत को हम लोग जिंदगी में इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कितनी आयतों की आपने तिलावत की मिसाल के तौर पर, इसका मतलब क्या हुआ? कुरान के वर्सेस है ना, कि कितनी आयतों की आपने तिलावत, किस आयत से लेकर किस आयत तक आपने तिलावत की। अक्सर हम जो जिंदगी के अंदर या इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं इसी

ईमान के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, मुझे माफ कीजिएगा, करना जरूरी है, क्या करें। कुछ हवाएं चली हैं कौम के अंदर, कुरान मजीद के बारे में। अभी अभी नैरोबी गया हुआ था, 3 हफ्ते पहले वहां था। अब मेरा ताल्लुक नैरोबी से ही है, तो कुछ जवानान आए हैं मेरे पास बैठे हैं, सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ है। तो किसी ने सवाल किया कि सरकार क्या ये सच बात है कि जो लोग अरबी नहीं समझते उन्हें कुरान की तिलावत करने की ज़रूरत नहीं और हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं। सुनिए, मैंने कहा क्या कहा, अभी अभी फुलां आए थे, मैं नाम तो नहीं दे सकता वरना मेरी मजलिस से फिर रिव्यू के लिए चली जाएंगे। कहा फुलां साहब आए थे और उन्होंने कहा कि जो लोग अरबी नहीं समझते कुरान की तिलावत अरबी में करते हैं या कुरान की आयतों का हिफ्ज अरबी में जो करते हैं अहमक हैं। अहमक समझते हैं हम, बेवकूफ हैं। देखें, ये लॉजिकल बात करने जा रहे हैं और क्या लॉजिक है इसमें। क्या इससे बेहतर है कि तुम ट्रांसलेशन पढ़ो तो तुम समझोगे, इंग्लिश में पढ़ो ट्रांसलेशन। तो मुझसे इस जवान ने सवाल पूछा कि क्या राय है आपकी। उसने कहा कि ट्रांसलेशन पढ़ोगे समझोगे और तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ जाएगी। रूहियत स्पिरिचुअलिटी। गुज़िश्ता साल मुहर्रम में स्टेनमोर की मजलिस में मैंने ये कहा था कि आजकल जो लोग अपनी हांकते हैं मेंबरों से, अक्सर चांद उनवान के तहत या तो कहेंगे इंटेलेक्चुअल है या कहेंगे स्पिरिचुअल है, हाँ, या कहेंगे मॉडर्न है या कहेंगे प्रोग्रेशन है या नहीं। ये चार गुलाबी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बहकाने के लिए। लिहाजा हमारे ज़माने में कोई ये लिखे चार अल्फाजों को या मेंबर से कहें तो ज़रा अलर्ट रहिएगा। कहा लॉजिकल है भाई, अरबी हम समझते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए समझना तो ज़रूरी है, आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा सरकार सुने, मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी ट्रांसलेशन से आप हासिल करेंगे, अरबी में कुरान पढ़ेंगे चूँकि नहीं समझते तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं आएगी। मैंने कहा सुने, मैंने कहा अकबर बादशाह गुजरा है, मुगल एम्परर, नाम तो सुना होगा आपने। उसका एक वजीर था जिसका नाम था बिरबल, ये बड़ा जहीन और शातिर शख्स था। न जाने अकबर को एक दिन क्या हुआ, बिरबल को बुलाया, कहा बिरबल मैं ये चाहता हूं कि तू जा और 3 दिन की मोहलत तुझे दे रहा हूं, मेरे दरबार में 3 दिन के अंदर तू 5 या 10 जो भी हो, यूं समझे कि 5 पागलों को लेकर, 5, और अगर तूने 5 को नहीं लाया तो मैं तेरे सर को कलम कर दूंगा। सुना है आपने, बिरबल बड़ा शातिर था, चला 3 रोज की मोहलत, सिर्फ 3 मिले, लेकर आए। अकबर ने देखा, कहा बिरबल मैंने कहा था 5, तू 3 लेकर आया। कहा नहीं, 5 है यहां, घात यहां तो 3 है। कहा नहीं, चौथा मैं जो पागलों की तलाश में गया, 5वां तू जो तूने मुझे पागलों की तलाश में भेजा। अकबर मुस्कुराए और कहा अब एक एक का दास्तान सुना है, तुझे कैसे मिले हैं। उसमें से एक कौन था जानते हैं हम, बिरबल बताता है अकबर को कि रात के वक्त मैं मंदिर के पुष्ट से गुजर रहा था, पीछे के हिस्से से गुजर रहा था, रात को तो मैंने देखा कि यह शख्स खड़ा हुआ है और कुछ ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। तो मैंने उसे सवाल किया, मैंने पूछा कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं। कहा मेरे सोने की अंगूठी यहां पर गिर गई है, ढूंढ रहा हूं। अब अखलाक है कि भाई ऐसे शख्स की मदद हो, आप बाहर निकले चप्पल गायब हो जाए मिसाल के तौर पर, जरूरी यह है कि मोमिनीन आपकी मदद करें या नहीं, ढूंढने में तलाश करने में, और अगर न मिले तो एक जूता कम से कम आपको दे दें। अरे हंसी है तो सही,
बात समझ में आती है नहीं कि मैं क्या कह

और गौर से कूफे की तरफ देखा और अजीब जुमला फरमाया, कहा वालेकुम या मुस्लिम, ए मुस्लिम मेरा भी तुम पर सलाम हो। अजादारो बाद में पता चला कि जब दुश्मन मुस्लिम इब्ने अकील को नौमे ज़ुलहिज्जा को गिरफ्तार करके दारुल इमारा की ऊंचाई पर ले आए कत्ल के इरादे से, तो उस ऊंचाई से शहादत से कबल मुस्लिम ने सलाम आखिर भेजा था, जिस सलाम का जवाब अबू अब्दुल्ला दे रहे थे। ये काफिला आगे बढ़ते गया, एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा कि जहां इमाम ने देखा कि कूफे की जानिब से कोई शख्स चला आ रहा है। ये कहा भैया अब्बास, भैया अब्बास उस मुसाफिर को जाकर रोको और उसे पूछो कहां से आ रहा है, अगर कूफे से आ रहा है तो कूफे की हालत दरियाफ्त करो। मैं अली अकबर के अब्बास आगे बढ़े, उस मुसाफिर के रास्ते को रोका, कहा भाई जरा ये तो बता तू कहां से आ रहा है। कहा कूफे से आ रहा हूं। कहा कूफे की क्या हालत है? एक मर्तबा आने वाला घबरा गया, कहा पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? अब्बास ने मुड़कर दिखाया, कहा ये काफिला हुसैन इब्ने अली फरजंद रसूल का है। उस मुसाफिर ने कहा अगर ये बात है तो मुझे हुसैन की खदमत में ले चलो, मैं हुसैन से कलाम करूंगा, हुसैन को बताऊंगा। इमाम की खदमत में हाजिर हुआ, हाथों को जोड़कर कहा फरजंद रसूल खुदा के लिए कूफा मत जाइएगा, जब कूफे से चला हूं मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत हो चुकी थी, सर आपका दारुल इमारा के दरवाजे पर लटकाया गया था और जिस्म को कूफे की गलियों में घुमाया जा रहा था। अजादारों ये सुनना था, एक मर्तबा इमाम जमीन पर बैठ गए, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फमिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कहा मुस्लिम की बच्ची को बुलाया जाए, मुस्लिम की बच्ची को लाया गया, एक मर्तबा मौला ने उसे अपने गोद में बिठाया, शफक्कत के साथ उस बच्ची के सर पर हाथ फिराने लगे, बच्ची समझ गई। कहा अम्मू आज इस कदर प्यार कर रहे हैं जैसे कोई यतीमों से प्यार करता है। मौला ने बच्ची को सीने से लगा लिया, अरे जब तक हुसैन जिंदा रहेगा तुम्हें यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं कहूंगा काश असरे आशूर के बाद सकीना पर कोई तरस खाता। हाँ अजादारो इख्तिसार में वक्त मेरा तमाम होने आ रहा है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। तारीख में हमें ये मिलता है कि आप कूफे की जानिब जा रहे थे, बढ़ रहे थे, आपके रास्ते को हुर इब्ने यज़ीद अर-रियाही ने रोका, कूफे की तरफ जाना चाहते थे, रास्ते को आपने बदल दिया, अब ये काफिला किसी और मंजिल की तरफ जा रहा है। रिवायतों में हमें मिलता है कि एक मकाम पर इमाम ने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिए और फिर खोल के आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर करीब आए, कहा बाबा सच है हम अल्लाह की जानिब से आए हैं, उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है, लेकिन बाबा क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस वक्त आपने ये क्यों फरमाया? मौला ने कहा बेटा अकबर आंख लगी थी, मैंने एक सवार को देखा जो ये कह रहा था ये काफिला जा रहा है लेकिन इसके पीछे पीछे उनकी मौत जा रही है। अजादार अकबर ने पूछा अवल असना अलल हा, ए बाबा क्या आम सच्चाई पर नहीं? मौला ने कहा तो फिर कौन सच्चाई पर होगा? अकबर ने कहा इदन वल्लाहि ला नुबाली वकअना अलल मौत वकअल मौत अलैना, अब हमें परवाह नहीं चाहे हम मौत पर गिर पड़े या मौत हम पर गिर पड़े। अजादारो ये काफिला बढ़ते गया, मुहर्रम के चांद पर हुसैन की नजर पड़ी, पहली तारीख मुहर्रम, दूसरे रोज मुहर्रम का आया, ये काफिला बढ़ता जा रहा था, एक मर्तबा वो अस्पे वफा था जिस पर मौला सवार थे, एक मर्तबा रुक गया। मौला ने लाख कोशिश की, जब वो अस्पे वफा था वो घोड़ा किसी तरह से आगे नहीं बढ़ा, मौला ने घोड़ा बदल दिया, सात घोड़े दूसरी मुहर्रम को इमाम ने बदले, रिवायतों में मिलता है।
एक घोड़ा भी जब आगे नहीं बढ़ा, आपने कहा भैया अब्बास अतराफ में रहने वाले बनी असद के लोगों को जमा करो। बनी असद के लोग जमा हुए, मौला ने

है, इंतजार कर रहा है, तड़प के अंदर है, उसको पता चलेगा। आप मजलिस का इंतजार करते हैं और एहतमाम करते हैं, अपने घरों से आते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल बस रिक्शा टैक्सी किसी में भी आते हैं, पार्क करते हैं, पैदल आते हैं, अंदर आते हैं, बैठते हैं, गर्मी है ज़ाहिर है, लेकिन कोई तड़प है आपके अंदर जो आपको लेकर आती है। और ये तड़प में हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तो उस इमाम हुसैन के सजदे का कमाल है कि जो इमाम ने खुद सजदा किया उसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। आप खुद सोचें ना कि इंसान इबादत और मजलिस आज़ादारी इबादत है ना, और ये इबादत में हर कोई तो नहीं आ सकता, और इबादत के लिए भी इंसान को मुकदमात तय करने पड़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए आपको वुजू करना है, लिबास का पाक होना है, नमाज का वक्त होना चाहिए, सारी चीज़ें हों तो आप नमाज तक पहुँचते हैं। मगर आज़ादारी तो हर वक्त है, हर जगह है, लेकिन उसके लिए आदाब हैं कि इंसान अपने आप को तैयार करता है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप यकीनन मुझसे बहुत बेहतर है, क्या मैं ऐसे कोई काम करता हूँ पूरा साल कि जैसे ही माह मुहर्रम आता है मैं खुद ब खुद फर्श आज़ा पे आ जाता हूँ, सारे काम छोड़ कर आता हूँ? और आप देखें हर कोई है, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता है वो वहाँ जाता है। तो इसमें आप आम जिंदगी के अंदर एक मिनट नहीं बैठ सकते, मजलिस में आप घंटों घंटों बैठे रहते, आम जिंदगी में इंसान बैठे थोड़ी देर से ज़्यादा बैठना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, मोबाइल देखता रहता है आदमी, बात भी नहीं करता सामने वाले से। लेकिन ये कैसा है कि देखें आप सब मुझे नहीं सुनने आते, आप जिक्र इमाम हुसैन सुनने आते, तो ये क्या है कि जो करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है जाने मोहतरम कि वो कि कौन सी ऐसी जज्जाबियत है, ग्रेविटी फोर्स है, और ये फोर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है। ये ऐसी फोर्स है जिसने पूरी कायनात को अपनी तरफ खींचा हुआ है। मजहब नहीं देखा जाता, मसलक नहीं देखा जाता, जबान नहीं देखी जाती, कोई चीज़ देखी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं। हिंदू है वो भी जाता है, क्रिश्चियन है वो भी जाता है, जो दीन पे अमल भी नहीं करता पूरा साल वो भी आता है। यानी ऐसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया जाने मोहतरम, ये बहुत ज़रूरी है समझना इस बात कि सैयदुश्शहदा ने करबला में ऐसा क्या किया है कि इंसान उसमें जज्ब हो रहा है। इसी रास्ते को पहचानना है ताकि हम समझें और अपने इमाम तक पहुँच सकें। वो जो लोग सैयदुश्शहदा के साथ थे उन्होंने इस जज्जाबियत को, इस अट्रैक्शन को, इस मैग्नेटिक फोर्स को महसूस किया। आपके सामने मैग्नेट जो नहीं होता, बचपन में खेलते थे मैग्नेट ले लेते थे तो कहीं वो स्पीकर के पीछे से टूटा हुआ निकलता था। आजकल के बच्चों को तो नहीं पता ये बातें जो थोड़े से हमारी एज के, मैं स्पीकर के पीछे एक मैग्नेट होता है, ख़राब हो जाता था उसको तोड़ लेते थे, उससे फिर लोहे की चीज़ें चिपकाते थे, चिपकती रहती थी, चीज़ें खुद खिंचती थी, दूर दूर करो करीब आती थी। सैयदुश्शहदा इंसानियत के कमाल की वो मैग्नेटिक फोर्स है कि अगर किसी के अंदर ज़रा सी भी इंसानियत पाई जाए वो इमाम हुसैन की तरफ खिंचा चला आता है। ज़रा सी इंसानियत, जरा सी इंसानियत पाई जाए खिंचा चला आता है। हुसैन हुसैन हुसैन, लोग ऐसे लोग अज़ीज़ाने मोहतरम जिनका ताल्लुक मसलक से नहीं है मगर जैसे ही हाय हुसैन बोलते हैं आंखों में आंसू आते हैं। नाम ऐसा क्योंकि इमाम ने अपना सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दिया, खुदा के लिए छोड़ दिया, मकाम सब कुछ, आराम सब छोड़ दिया खुदा के लिए। खुदा तेरा दीन बच जाए, मेरा अली असगर भी जाता है तो जाए। जब इमाम हुसैन ने सब कुछ छोड़ दिया तो खुदा के पास भी जो कुछ है वो सब हुसैन का है। ये आज पूरी दुनिया जो

आपको हुसैन हुसैन गर्दी नजर आ रही है, ये सब खुदावंद मुताल ने अता किया है कि जो जो अल्लाह के लिए कदम बढ़ाता है खुदा उसके लिए सब कुछ अता कर देता है। उस जज्जाबियत को जाने मोहतरम की कौन सी चीज़ है कि हम भी भारत अपने अंदर इसको डेवलप करें, क्योंकि जब तक हमें करबला समझ में नहीं आएगी हम जहूर तक नहीं पहुंच सकते। जहूर तक पहुंचने के लिए करबला से गुजरना पड़ेगा। यहां हम अपने वक्त के इमाम को मारफत यानी इमाम शनासी बहुत जरूरी है। इमाम जो है वो किसी फिरके का नुमाइंदा नहीं है, किसी ग्रोह का इमाम नहीं है। इस बात को सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि इमाम सिर्फ शियों का इमाम नहीं है। ये जो खिलकत इंसानियत है इसमें इमामत का किरदार क्या है, इमाम है क्या। और ये इमाम शनासी की गुफ्तगू हर वक्त इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम उस मारिफत के मकाम पर नहीं पहुंचेंगे, जाहिर है कोई करबला के शहदा के बराबर तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन करबला वालों ने हमें एक रास्ता दिया है, अगर तुम इस रास्ते पर चलो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। और वो रास्ते को हमने तय करना है। वहां पहली शर्त इमाम को पहचानना है। लोग इमाम को पहचानते, रसूल के नवासे हैं लोग जानते थे, सामने वाले भी जानते थे, सहाबी हैं सामने वाले भी जानते थे। जानना सिर्फ कमाल नहीं है, पहचानना और फिर अतात करना कमाल है। अतात करना कमाल है, अतात करेंगे तो कमाल होगा। और ये अतात जाहिर है कैसे होगी, आप बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जानी मोहतरम, पहले भी आपकी खिदमत में कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि शख्स जो है वो ज़रूरतमंद था और मक्का और उसके आसपास मक्का के थे इबादत के या अरफा के अयाम थे, और उसने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे और इबादत कर रहे थे और अरफे का भी पर शख्स जो था वो अहवास के कहीं करीब से आया था। पर उसने देखा, कहा कि मौला मैं आया हूँ और मुश्किल में हूँ, काम मेरा बेहतर था लेकिन मैं इस साल कुछ मालियात यानी टैक्स नहीं दे सकता। वो जो गवर्नर है वहाँ का, वाली जो है वो आपका चाहने वाला है, अगर आप कुछ लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। गोखे देखें इमाम इबादत में मशगूल थे, लेकिन खिलकत की खिदमत करना, अपने मानने वाले के काम उसके काम को अंजाम देना खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। इमाम ने बहरहाल लिखा उसके लिए कि हमें सुना है कि तुम्हारा अकीदा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इमाम को चाहेगा उसका अकीदा अच्छा ही होगा। आपने सुना है तुम्हारा अकीदा बहुत अच्छा है, और ये लिखा और लिखा कि जो लोगों के काम आएगा, मोमिन के काम आएगा, उसके लिए आखिरत में भी बहुत आसानियाँ हैं। बहरहाल एक नामा लिखा, उसमें और भी चीज़ें थी लिखा। जब हज से लोग दायरे वापस आए थे तो उसको लोगों ने बता दिया कि इमाम ने तुम्हारे लिए एक नामा एक लेटर भेजा है। तो वो बड़ी इस्तराब से इंतज़ार कर रहा था। अब जब उसे पता है वो शख्स जो मेरा लेटर लेकर आया है वो दाखिल हो गया है शहर के अंदर, तो ये खुद अपनी जगह छोड़कर उसे लेने गया। इसने बुलाया उसको अपने पास एहतराम से, उसने नामा दिया, इसने नामे को पहले लिया और उसको चूमा, उसको आँखों पे लगाया, उसके बाद उसको पढ़ा। इमाम ने कहा कि भारत मोमिन है, इसको खुश कर देना। उसने पूछा तुम्हारी मुश्किल क्या है, उसने बोला बुलाओ उसके सारे जो भी हिसाब किताब है उसको ख़त्म करो। फिर अपने मुंशी को कहते हैं बुलाया, कहा मेरी जायदाद के दो हिस्से करो, एक हिस्सा इसको दे दो। वो इतना खुश हो गया, उसने बोला तुम खुश हो गए, हाँ हाँ मैं ये तुम्हें तो बहुत खुश हो गया। कहते हैं कि जिस फर्श पे कालीन पे खड़ा हुआ था, कहा जिस पर मैंने तुमसे नामा लिया ये कालीन भी इसी को दे दो। अब चला गया खैर, बाद में वो कहते हैं फिर वो मदीना ज़ियारत पे गया, इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इमाम ने उससे पूछा, तो उसने कहा हाँ मौला उसने मुझे खुश किया था। तो इमाम फरमाते उसने सिर्फ तुम्हें

कुछ नहीं किया, उसने हमें भी कुछ किया है। अताअत इसे कहते हैं, यानी मुती होना, अताअत करना, जाने मोहतरम। इसके लिए इमाम पहचानना पड़ता है, इमाम गुलाम, इमाम का गुलाम है, छठे इमाम का गुलाम है शख्स जो है वो खुरासान से आया। अब आप जानते हैं कि इमाम की खिदमत करना, आपको कोई बोल दे, आप बेशक मिलीनियर आदमी हो और आपको बोल दे कि मौला की नौकरी है, छोड़ के चला जाएगा। वाकई जो इमाम को पहचानता है वो थोड़ी रखेगा, वो तो बोलेगा कि मुझे तो चाहिए नौकरी। अब उसने देखा कि ये इमाम का खादिम है, उसको बोला भाई ये जो ड्यूटी करते हो ये मुझे दे दो, इसके बदले में खुरासान में तुम्हें मैं बाग दूंगा, ज़मीन दूंगा, महल दूंगा, सब कुछ जो मेरा घर है सब ले लो, मुझे नौकरी दे दो। अब जिसको पहचान है वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। जाने मोहतर, बस इसी विलायत को पहचाने अपने वजूद के अंदर, रश किया करें कि आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत में विलायत अली जिब्ने अभी तालिब को रखा है। ये रश करने की बात है, यानी कितना इंसान कीमती है, इनसे मोहब्बत करता है। उसने कहा ठीक है मैं इमाम से पूछता हूँ। इमाम खिदमत का बोला ऐसे ऐसे है, शख्स आया उसने मुझे ऐसा कहा है। इमाम ने बोला तुम्हारी मर्जी, जाना है जाओ। जाने लगा, इमाम ने कहा अच्छा मेरी एक बात सुनते जाना। कहा जो इस दुनिया में जितने हमारे करीब होगा उतना ही आखरत में हमारे करीब होगा। बस ये सुनना था, उसने बोला कि नहीं फिर तो ये सौदा नुकसान दे रहे, छोड़ दिया। जाने मोहतरम, और अब हम ये वाक़या आप सुने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वाक़या आपने सुने हुए नहीं है, मैं सिर्फ आपको करीब करने के लिए ये वाक़या बयान कर रहा था। अब ये जो कैफियत है क़ुर्ब इमाम की, इमाम की क़ुर्बत, इमाम के करीब रहना, तो क्या ये कैफियत मेरे अंदर मौजूद है या नहीं, मैं चाहता हूं या नहीं चाहता। इमाम गैबत के पर्दे में फलसफा गैबत है, अलबत्ता फलसफा फलसफा गैबत, फलसफा गैबत में यानी गैबत के फलसफा यही है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का दीदार हो, जरूरी नहीं है, लेकिन कुर्बत के लिए दीदार की जरूरत नहीं है, कुर्ब के लिए महसूस करने की जरूरत है। क्या मैं अपने आप को अपने इमाम के करीब महसूस करता हूं या नहीं करता, मैं अपने इमाम के लिए तड़पता हूं या नहीं तड़पता। किसी से मिलना चाहता है ना, दिल चाहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। कभी आपने किसी से इमाम का पता पूछा? जिस इंसान मोहब्बत करता है चाहता है, किसी से तो पूछेगा, कभी तो पूछेगा कि भाई मैं कैसे मिल सकता हूं, मुझे पता बताओ, कभी पूछा आपने? अजाने मोहतरम, मुश्किल सारी यही है कि हम उस एहसास को पैदा नहीं करवा रहे। वो कहाँ आए, वो किसके पास आए, वो किसके घर आए। आयतुल्ला सिस्तानी के वाले साहब जो है वो गुजर रहे थे, आप जानते हैं कि जो हिल्ला शहर है उसके पास से गुजर रहे थे, देखा एक मकबरा है, वो अली उसका नाम था, मशहूर था, उसके बारे में लोगों ने बताया कि बहरहाल वो वक्त के इमाम के लिए बहुत तड़पता था, बहुत तड़पता था। एक दिन तड़प इतनी शदीद हुई कि बयाबान में चला गया और वहाँ जाकर जारो कतार रोने लगा, मौला मुझे मिल जाए, मौला मुझे मिल जाए। इमाम आ गया, इमाम आ गया, कहा मौला मौला मौला, कहा मौला आप आते क्यों नहीं है? कहते कहाँ हूँ, लोग तैयार नहीं है। कहा मौला नहीं आप आए, हमारा पूरा इलाका तैयार है। इमाम ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को बुलाना, फलाने दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन मेरे आने से पहले अपनी छत पे दो भेड़ों को रखना, भेड़ जानवर जो दुम्बे, और अपना जो तुम्हारा इलाके में जो कसाई है उसको बुला लेना ऊपर मेरे आने से पहले, और बाकी लोगों को जिनको तुम समझते हो बोला। अब इन्होंने कहते ना स्क्रूटनिंग की,
کتنے سارے لوگ ہیں اس میں سے چھانٹا چھانٹا کم کرتے کرتے کرتے جو بہترین لوگ تھے ان کو جو ہے وہ نیچے کھڑا

कि उसे हमेशा एक रुकावट मिली। ये रुकावट कौन डालता था? आप क्या समझते हैं तबलीग करना आसान काम है, किसी को समझाना आसान काम है? ये तो इमाम हुसैन के मजलिस और जिक्र का कमाल है जो आप सुन रहे हैं बैठे हुए, वरना तो सगी औलाद नहीं सुनती भाई। मैं तो खुद अपने बेटे को कुछ समझाना हूँ डर डर के समझाता हूँ कि पता नहीं जवान है, वैसे तो खैर माशाल्लाह बेहतर है, अल्लाह उसको सेहत सलामती दे, लेकिन बहरहाल इंसान घबराता है ना जवान से, कैसे तब्दील करेगा? आप किसी को सड़क पे चलते हुए या मोहल्ले में या गली में रिश्तेदारों को आप कह सकते हैं? नहीं कह सकता आदमी। इतना मुश्किल काम है आज तब्दील करना। तो सोचें अंबिया जब कर रहे थे उनके मुकाबले में कौन था? फिरौन, नमरूद, कारून, हामान, आसान काम था भाई। उनकी बड़ी बड़ी इंटरप्राइज थी, आज के दौर के अंदर ट्रिलियन डॉलर कंपनी थी भाई फिरौन की, वो अपनी कंपनी खराब करेगा? आखिर मक्का के मुसलमानों को क्या परेशानी थी रसूल से? क्या परेशानी? उनके सगे लगते थे ना बास के, तो रिश्ते में थे ना भाई बनी हाशिम, और वो पूरा इतना बड़ा चैप्टर और कबीला और सब कुछ थे। अबू लहब, अबू सुफियान कौन थे? क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उस वक्त भी जो थी ना, उस वक्त पेट्रो डॉलर तो था नहीं, लेकिन उस वक्त ये खाना काबा और जो अंदर बुत थे ना, तो इससे पैसा आता था। लोग आते थे इबादत करने तो पूरा सेटअप चलता था, दुकानें थी, कारोबार था, सेटअप देखें बहुत बिग सेटअप था, आसान नहीं था। इतना बड़ा था कि वो जो नजरान का वो जो था, वो जो अपने साथ ऊँटों को लेकर आ गया था और हाथियों को लेकर, कि मैं उसको ख़त्म करूँगा क्योंकि ये इबादत गाह थी बहुत बड़ी। उसने बोला मैंने जो इबादत गाह बनाई है कोई आ ही नहीं रहा, तो वो इधर आ गया, तो उसने बोला मैं इसको ख़त्म करता हूँ मैं इसको, क्योंकि अंदर बहरहाल दुनिया से लोग आते थे उस ज़माने में। वो तो आप देखें कि जनाबे अब्दुल मुतलिब कि जब उसने उनके ऊँटों को ले लिया और बुलाया इनको उसके मक्का के करीब अपना पड़ाव डाला, तो इनको ये खुद आए, उन्होंने कहा मेरे ऊँट वापस करो। तो उन्होंने बोला मैं मक्का को ख़त्म करने आया हूँ, तुम मुझसे ऊँट मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, जो काबा का मालिक है वो खुद काबा को बचाएगा। वो तो तौहीद परस्त थे ना, तो ये इबादत का थी, ये एक मार्केट थी इस जाने मोहतरम उस जमाने के अंदर। मार्केट जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो यही होगा, इकोनॉमिकल कैपिटलिज्म अभी भी है, पहले भी था इस जाने मोहतरम। लोगों का फाइनेंस डिस्टर्ब हुआ, लोगों की दुकान हुकूमतें डिस्टर्ब हुई, लोगों का जाहो जलाल डिस्टर्ब हुआ, लोगों की शोहरत डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। आप खुलासा ब्रैकेट बंद करता हूँ, आप बहुत बहुत फॉरवर्ड करता हूँ, आपको आगे ले जाता हूँ। आइम्मा अलैहिस्सलाम, चाहे वो छठे इमाम हो, सातवें इमाम हो, नवें इमाम हो, दसवें इमाम हो, आठवें इमाम, जब भी ये किसी ओकेजन पर बाहर निकलते थे, मिसाल के तौर पर खाना काबा पहुँच गए, तवाफ करने पहुँच गए, हज के लिए पहुँचे, उस वक्त के खलीफा की सारी शान और शौकत रोन दी जाती थी। लोग ऐसे इमाम का तवाफ करने लगते थे, घबराहट होती थी उसको, वही हम बादशाह, हम खलीफा, और ये कौन है? वही बुग्स पैदा होता था, वही मुश्किल पैदा होती थी। इमाम रजा अलैहिस्सलाम इमाम रजा जुम्मे की नमाज पढ़ाने हारून के दौर में बाहर निकले, अभी निकले तकबीरें बुलंद हुई, देखा लोग जोक दर जोक निकलना शुरू हो गए। ये खबर पहुंची उस तक, उसने जुम्मा ही रुकवा दिया, जुम्मा रुकवा दिया, इमाम बोला वापस, घबराहट, खौफ, हमारा क्या होगा? तो आप इस बातों को समझे, पोस्ट डेजिग्नेशन, फेमस होना, फाइनेंशियल होना, ये सब मुश्किलात हैं। दुश्मन जब देखता है कि मेरा ये सिस्टम कहीं ना कहीं खतरे में है, तो वो इस विलायत के सिस्टम के मुकाबले में आता है, उसे फिर नजर कुछ नहीं आता,
اس کو نظر نہیں آتا کہ بس میں کیا کر رہا ہوں، بس وہ جو کرتا ہے کرتا رہتا ہے. عزیزان محترم، وہ جب تک یہ کر سکتا تھا

हुर मैदान में गया। हुर था शुजा शख्स का, लड़ा लड़ते हाल उसे आशूरा थी, गिर गया। गिरा तो फिर इमाम पहुंच गया, इमाम ने उसका सर भी गांधू पे रखा। उधर क्या कहा था इमाम ने, हुर तेरी माँ तेरी अजा में बैठे। अब क्या कहा इमाम ने, हुर तेरी माँ ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा है, हुर यानी आजाद हो गया। अज़ादारा ने मोहतरम, इमाम ने कयामत का इंतजार नहीं किया कि रोजे मैशर कोई जजा दे हुर को, अपनी पीरहन से अपनी माँ का रुमाल निकाला, एहतराम किया था ना जनाब इस सैयद का, पेशानी पर बांधा, ये बता दिया दुनिया को जिसे मेरी माँ आजाद कर वो आजाद हो जाता है। माँ को भी बेटे से बड़ी मोहब्बत थी, माँ भी आज रोजे आशूरा भी आई, न जाने किस तरीके से अपने बच्चे के सर को रखा होगा, और आज भी वो माँ गली गली कूचा कूचा उसी टूटी हुई पसलियों के साथ इन आजादारों के आंसुओं को